इस शब्द दे विच प्रभु नूं मिलन वास्ते मन लोचदा है और प्रभु नूं जिहड़ा मिलावे ओहदे अगे अरदास।

इस देव सिख माली दे कोल होर भी बहुत सारे माली कम सिखदे ने। ए देव सिख जिथे बाग दा काम करदे दूसरिया नू माली दा काम सिखांदे है, नाल गुरबाणी दा भी प्रेमी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणा दा प्यारा एक देव सिख एक एदी घरवाली एक 11-12 साल दी इन्हां दी लड़की ए तीनों जी गुरबाणी दे नाल जुड़े हुए शुभ गुणा दे नाल जुड़े हुए काम कार कर दे अपना जीवन बता रहे ने। मां बाप धार्मिक ख्यालां दे होन ते बच्चियां ते भी इसका असर होंदा। माता पिता अमृत वेले उठदे ने ते बच्ची भी अमृत वेले उठदी। मां बाप अमृत वेले उठ के बाणी पढ़दे ने, बच्ची भी नाल बाणी पढ़दी। ए परिवार गुरबाणी नाल जुड़िया होया। ए देव सिख कदी कदी फुलां दा काम करदा अपनी घरवाली और अपनी बच्ची नूं क्या करदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुलां नाल बड़ा प्यार करदे ने। आनंदपुर साहब जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रहिंदे ने उन्हें ऐसा बाग लवाया है हर तरह का फुल उस बाग विच मिलदा है। जिस तरह इंसान की संभाल करी दी है इसे तरह साहब जी फुलां की संभाल करदे। पिता दे कोलों ये गल्लां सुन के वो 11-12 सालां दी बच्ची मन विच प्यार आया। एक दिन कहन लगी पिता जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुलां नाल बड़ा प्यार करदे तां मैं भी अपने हत्थां दे नाल फुल उगा के आनंदपुर साहब लैके जावांगे। अपनी बच्ची दी ए भावना देखी ते देव सिख निहाल हो गया। गल विच पल्ला पाया हाथ जोड़ के कहन लगा ए कलगीधर पिता तू अंतर्यामी है जानी जान है अगर मेरी बच्ची दे मन विच ऐसी भावना है तो कृपा करी पातशाह ए भावना एदी हमेशा बनी रहे। फुलां दी बहार सी देव सिख नवे फुल लगा रहे है। ए बच्ची भी चकोदरे नाम दा एक फुल इसने फुल बीजे है। जिस दिन फुल बीजे है उस दिन मन दी ऐसी भावना हो गई जद फुल वड्डा होवेगा आनंदपुर साहब लैके जावांगे। ज्यों सवेर दी बैठी शाम तक उस फुल दे सराहणे बैठी रही। रात कर गई सारी रात उस फुल दा ध्यान। अमृत वेले उठी उस फुल दा ध्यान। दिन बीतते गए बीज पुंगरिया चकोदरे दा फुल हौली हौली खिलन लग पे है। ए बच्ची दिन रात सौंदियां बहंदियां खांदियां पींदियां उस फुल विच ध्यान। कदू फुल वड्डा होवेगा कदू आनंदपुर साहब लैके जावांगे। ए एक प्यार है इस बच्ची नूं नहीं पता प्यार की हुंदा है पर एक खिच है
एक तड़प है मन विच और उमर उमर देखिए तो उमर कुछ भी नहीं पर जे प्यार देखिए ते कैसा प्यार उठदिया बहदिया फुल विच ध्यान निरा फुल च ध्यान नहीं गुरु पिता दे चरणा विच भी ध्यान कदू फुल वड्डा होवेगा ते लैके आनंदपुर साहब जावांगे।

प्रभु दे प्यार दी, परमेश्वर दे प्यार दी आपां विचार कर रहे सां। होशियारपुर दे विच रहण वाला देव सिख जी दी बच्ची 11-12 साल दी, जिन्हों पता लगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुल्लां नाल बड़ा प्यार करदे ने, ता प्यार मन विच ऐसा उपजिया, ऐसा प्यार मन विच आया, आप फुल बीजिया, चकोदरी दा फुल, पत्तियां निकल आईयां। ता इस बच्ची ने कपड़े दे एक गुत्थी बना के फुल दे उत्ते पा दीती, कोई पंछी इस फुल नू खराब ना करे, क्योंकि ए फुल आनंदपुर साहब लेके जाने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणां नू मत्था टेक के ए फुल भेट करना। इस बच्ची दे मन दी ए भावना, फुल जद पूरी तरह खिल गया, आनंदपुर साहब जाण नू भी 2-3 दिन बाकी रह गए ने, अज ये बच्ची अपने पिता दे नालों अपनी माता दे नालों पहला ही बाग विच आ पहुंची। बाग विच आके रोज दी तरह बाग दे जिस खिते विच ए चकोदरे दा फुल लगा है, ए बच्ची उत्थे आ पहुंची, फुल दे उत्तों गुत्थी उतारी, फुल वाल देखते है सोना फुल खिड़दे है, उधर हाले सूरज चढ़िया सी, सूरज दियां किरणां सुनहरे रंग दियां इस फुल ते पईयां, और ए फुल सोने दी तरह चमक उठे है। एक सवेर दा वेला, एक सूरज दियां पहलियां सुनहरी किरणां फुल ते पईयां, जिथे फुल खिड़िया सोने दी तरह चमक उठिया, उसे तरह ए जिहड़ी बच्ची है फुल देख के एदा मन भी खिड़ गया। उम्र बेशक छोटी पर पिता दे कोलों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे गुण सुन के कथा कहानियां सुन के मन विच बड़ा प्यार सी। इस बच्ची ने फुल वाल देखिया, मन गुरु दे चरणां विच जा पहुंचिया, हाथ जोड़ के अखां बंद करके फुल दे कोल बैठी और बेनती करती है, ऐ कलगीधर पिता कृपा करनी, ए जड़ा फुल

उस वेले दा ओ नक्शा जिस तरह भी आया उस बच्ची दी बेनती अपनी कलम द्वारा दास ने इस तरह लिखण दा यतन कीता। इस नु कविता समझो या उस बच्ची दे मन दा वैराग वलवला समझो। मानो बच्ची हाथ जोड़ के अरदास पे कर दिए मैनू तेरे नाल इन्ना है प्यार मेरे सतगुरा नीले वाले आ बाजा वाले आ फौजा वाले आ।

पुल ना तोड़ी इस बच्ची दी आवाज विच इन्ना दर्द सी तरला सी कांबे दा हिरदा कंब गया उदा हाथ पिछा आया पर जसवंत राय वो गुस्से विच कहन लगा कामिया कोई फुल क्यों नहीं तोड़दा तेनू क्या फुल तोड़ कामे ने फिर हाथ वधाया फुल तोड़न वास्ते हुण उस बच्ची ने बाल्टी उथी सुट दिती ज्यों उथों भजी कहिंदे आ रही है हाए ना तोड़ वीरवे ते कामा ओदा हाथ

या उस लड़की का तेनू क्या फुल तोड़ मालक दा हुक्म कामे ने ते मनना है उस कामे ने फुल नू फिर हथ पाया बच्ची भी कोल पहुंच गई इधर कामे ने फुल तोड़िया उधर उस बच्ची ने आखरी वरी किया हाय ना तोड़ केंदी हुई धरती ते डिगी ते बेहोश हो गई ए नजारा देख के जसवंत राय हैरान हो गया उस अपने महल नू मुड़ पिया पिछे पिछे और नौकर हाथ विच फुल पड़े है ओ भी तुरदा जा रहे है पर उस नू इस तरह जापता है जिवें फुल विचों इको ही आवाज आ रही है हाय ना तो जसवंत राय महल विच जाके बैठा कामे ने ओ फुल सामने रखिया हाय ना तोड़ कहिंदा होया नौकरी छड़ के ही उत्थों चला गया कहिंदा जा रहे है मैं अपराध कीता फुल नहीं तोड़िया एक बच्ची दी मैं जिंद तोड़ी नौकरी छड़ के भज गया जसवंत राय हैरान हो गया पर उसदे कन्ना विच भी इको ही आवाज गूंज रही है हाय ना तो उधर जसवंत राय महल विच बैठा परेशान है ता दूसरे पासे देव सिख पता लगा बच्ची बेसुरत है बाग विच ताज देव सिख अपनी बच्ची नू मंजी ते पा के घर लै गया सिद्धकवान सिख ने बाणी नाल जुड़े हुए बच्ची नू मंजी ते पाए है देव सिख एदी घर वाली कोल बैठे बाणी पै पढ़दे ने रात पै गई सारा दिन बीत गया पर बच्ची नू होश कोई नहीं जसवंत राय तन पदार्थ बहुत है गुरु तू बेमुख है अमृत नहीं छकया ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू ठीक भी नहीं समझता ए नाने हथियार चुके ए लड़ाइयां लड़दे ने इस करके मैनू गुरु ते भरोसा नहीं ते बेमुख होए है पर अज इस नू चैन नहीं आ रहे रात पई जसवंत राय जद सुता एक सुपना देखिया ए हिंदुस्तान हिंदुस्तान दे जिन्ने भी लोग ने किसे भी जात दे किसे भी मजहब दे ए सारे लोग एक फुल्लां दी तरह ने कोई किसे रंग दा फुल कोई किसे रंग दा फुल फुल आसरे ने मैं करे ने खिड़खड़ा रहे ने जसवंत राय सुपना देख रहे है हर फुल दे सराणे एक तुर्क पठान खड़ा है हर एक फुल दे सराणे एक एक तुर्क पठान खड़ा है अचानक एक ऐसी हनेरी चली उन्हां तुर्का पठाणा ने अपने पैरां थले इन्हां फुल्लां नूं लताड़ना शुरू कर दिता और हरेक फुल विचों इक्को ही आवाज आ रही हाय ना तोड़ फुल लहू लुहाण हो रहे ने ए तुर्क पठान फुल्लां नूं मसल दे जा रहे ने अचानक पूरे वल्लों एक लिशकारा वजा एक गर्जवी आवाज आई खबरदार ठहर जाओ हुण कोई फुल्लां नूं हाथ ना पाणा ए लिशक ने जो खबरदारी की थी वो फुल्लां नूं लताड़न वाले ठठंबर गए कुछ मारे गए कुछ भज गए कुछ आप फुल्लां दी तरह निमाणे हो गए संभल गए सुधर गए फिर आवाज आई रख लिया ए नजारा देख के
जसवंत राय की अख खुल गई। सारा शरीर परसीने नाल भरे है। घरवाली नूं उठाया। जसवंत राय कहन लगा, भलीए लोके मैं बड़ा बेचैन हां। इस तरह जापदा है जिवें महल दी एक एक इट विचों आवाज आ रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। मेरे कन्ना विच एहो ही आवाज गूंज रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। पुरजा दी सुपना घरवाली नूं दस्सिया ते घरवाली ने कहा, स्वामी जी जो आपां देखदे हां जो सोचदे हां ओह कई वारी सानू सुपने विच नजर आंदा। तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं इस करके ठीक नहीं समझदे कि इन्हां हथियार चुके ने, इह लड़ाइयां लड़दे ने। पर स्वामी जी साधु संत हिंदुस्तान विच होर भी बड़े ने, ओह भी पुन्ना नूं जाणदे ने, पर उन्हां हथियार नहीं चुके क्योंकि हथियार चुकण दी जाच नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕ ਮੁਗਲ ਜ਼ੁਲਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਨ ਵਿਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ

जसवंत राय अपनी कारवाली दे नाल चकोतरे दा फुल लैके जा देव सिख दे घर पहुंचे अमृत वेला हो चुका सी। उस वेले एना की तकिया एक मंजी ते वो बच्ची लम्मी पई बेसुरत है ते सिख एदी घरवाली होर सतसंगी गुरसिख प्यारे बैठे ने और सारे बैठ के श्री सुखमणी साहब का पाठ पै कर दे। बच्ची दी हालत जसवंत राय देख के उदा हिरदा पारा आया मन पारा आया। जसवंत राय अगे होया उदी घरवाली ओ फुल बच्ची दे मुंह कोल कीता कहन लगे बेटा सानू की पता सी इस फुल विच तेरी जान है जे पता हुंदा ते फुल कदी ना तोड़दा। उठ बेटा अखां खोल मैनू माफ कर दे। बच्ची ने अखां खोलियां पर जद अखां खोलियां बाणी दा अभ्यास सी बाणी पढ़दी ने अखां खोलियां। अखां खोल के पिता वल देखिया पिता दे गल विच गलवकड़ी पा के वो बच्ची कहन लगी पिता जी मैं ते एवें दुखी हुई मैनू ते हुण समझ आए फुल साडा नहीं इह ते साडे मालक जसवंत राय दा। जसवंत राय कोल बैठा ते बच्ची कह रही है ए फुल मेरा नहीं बाग तुहाडा बीज तुहाडे पैसियां दा खाद तुहाडे पैसियां दी असी ते तुहाडे नौकर आ मैं ते एवें गिला कीता। जद ए सुनिया ते जसवंत राय रोण लग पिया कहन लगा बेटा उम्र तेरी छोटी पर गल बड़ी वड्डी कही सचमुच गुरसिखां दे हिरदे बड़े विशाल हुंदे बेटा मैं गुरु तू दूर हो गया सां पर तेरे सदका हुण मैं भी गुरु कोल चलांगा। ये सारे जने हुशियारपुर तू चले आनंदपुर साहब पहुंचे गुरु का दरबार लगा सारे मत्था टेकिया सारे बैठ गए ने। ए बच्ची हाथ विच चकोदरे दा फुल फड़े आ ध्यान गुरु दे चरणा वल कदी गुरु दे चेहरे वल कोल पहुंची सामने फुल रख के जद कलगी तर पिता नूं मत्था टेकिया ता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बच्ची नूं अपनी गोद च बिठाया सिर ते प्यार दिता कहन लगे बेटा तू ते एवें रोई एवें दुखी होई जिस दिन तू बीज बोया तू बीज कोल नहीं बैठी बेटा तू ता मेरे कोल बैठदी रही तू इस फुल नूं पानी नहीं पाया तू ता मैनू पानी पियांदी रही है। बेटा तेरा फुल ए ता कदों दा मैनू पहुंच गया। ए सुन के जसवंत राय उठिया चरणा ते डिग पिया बड़ी माया भी भेट कीती जो कुछ भेटा कर सकदा सी कीता ते नाले अपना आप भी भेट कीता। पातशाह कर कृपा दे अपने चरणा विच जगह सतगुरां ने कृपा कीती जसवंत राय ने भी हुण अमृत छकिया घरवाली ने भी अमृत छकिया देव सिंह ने भी अमृत छकिया इन्हां सारियां परिवारां ने अमृत छकिया और गुरु की खुशियां लैके फिर वापस हुशियारपुर नूं परते। साध संगत प्रभु दे प्यार गुरु दे प्यार दी दुनिया आम संसारी लोकां दी दुनिया नालों अलग है। दुनिया बनाण वाला एक परमेश्वर है पर भगतां दा रंग ते संसारी लोकां दा रंग वखरा है। आओ करिए अरदास सच्चे पातशाह एहो जिहा प्यार सानू भी दे इंसान इंसान नाल प्यार करे
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ।

लक्षों राशि जोन परमाया, कई जन्म सैल गिर करया। लक्षों राशि जोना च भरमदे भरमदे आया से पाशा तेरे दरबार। कई बारी असी सैल गिर करया, कई बारी असी पत्थर दी जून पहाड़ बने। ते एक एक पहाड़ दे वेखो कितना चिर लग जांदा एक जून विच। ते एक जून विच इतना चिर लगदा है कि लख चौरासी जूना विच देखो कितने समय बाद सानू ये मनुष्य जन्म मिलया। तो से पाशा दे दर ते सारे जोगियां करी से पाशा बहुते फेर पए किरपन को। असी लख चौरासी जूना तू फिरदे फिरदे हूं तुहाडे द्वारे ते आए हां, हूं कृपा करो। बहुते फेर पए किरपन को, अब किछ कृपा कीजे।

सुज न सुजई चकवी चंद न डिठा भावे सिमल बिरख न सफल होए चंदन वास न बांस समावे सपे दुध प्यालिए तुम्हें दा कौड़त न जावे न्यू थल चंबल।

इस अंधार को मेटने के लिए गुरु नानक अवतार हो गया, जिसने किया सिदक बेड़ा पार हो गया। पाप गिरासी पृथ्वी तौल खड़ा कर हेठ पुकारा, धरती ने रो के पुकार कीती है निरंकार, मैं बड़ी दुखी हूँ।

और आदम खोर सी, सारे जंगल दे जीव जंतु कोई नहीं इसने छड़िया, सारे खा गया। हुण आदमियां नूं खाना शुरू कीता, जेड़ा स्थिति भुलिया पटकिया इधरों लंघ जांदा है। वड्डा कड़ाया तेल दा भर के रखिया होया, उहदे विच तल के ते खा जाना।

बाबा जी ने रोह दे विच आके खूंडा खड़का के आख्या भी कौन है बोलता क्यों नहीं ता इसने आख्या मैनू नहीं जान दे इस जुग दा राजा मैं हां कल जुग ते बाबा जी ने आख्या भई असी ता दुनिया छड़ी घर बार ते आ गया जंगल दे विच निरंकार दे गुण गा रहे हैं ते तू इत्थे भी साढ़े

नहीं तो फिर बई तू सोच लै, क्योंकि नाम जपण वालियां दे नेड़े जमदूत भी नहीं आ सकते, तो तू किवें आ जाएगा। जो बाबा जी ने रोह दे विच खूंडा खड़काया, नट लगा।

चोला बदलन लगिया कोई देर नहीं लगाउंदे। आख्या हाथी नूं तां कच्ची तंद तोड़न वेले भी समा लग सकदा है, पर महापुरख चोला बदलदे आ इक निमक भी नहीं लगाउंदे। महापुरख तां चोला इंज छड़ जाउंदे ने जिवें सप अपनी कुंज छड़ जाउंदा है। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। बाबा जी जदों चोला छड़ गए, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने सेवा संभाली, तां उस वेले भी कलयुग ने आके अवज्ञा करनी चाहिए।

सुचेत होके नाम बाणी दा प्रवाह चलाया करो। ता उदो दा श्री सुखमनी साहिब दे पाठ, श्री अखंड पाठ, ब्यंत बाणी दे प्रवाह श्री नानक सर विखे चल रहे ने। संगता आके अपनियां अरदासां कर दियां ने, बाबा जी दियां खुशियां ले

0: दो बारी वाहेगुरु तेरे मुखों निकलिया, दो बारी ओदे मुखों निकलिया। सिख नू सिख मिलिया विच नाम शामिल हो गया। आखो सतनाम
1: वाहेगुरु।
0: सिख नू सिख मिले, असी इना ही पुछिए की हाल है बच्चियां दा, की हाल है। नाम ते नहीं ना चेते आया, जदों फतेह बुलावांगे कन्ना नू भी नाम चेते आएगा, रसना नू भी नाम। सोजी पाई।

हे वाहेगुरु, हे ईश्वर, साडा सुभाई है भूल जान। असी कल जुगी जीव जो होए, साडा सुभा है कोई सानू अखां विच पाण लई सुरमे दी सिलाई दे देवे, असी उसदा तां धन्नवाद कर देंदे हां। पर तू सानू सुंदर नेत्र बख्शे हन, कंचन वर्गा शरीर बख्शिया है, चंगा रहन बहन पहनन ते होर बेअंत कृपा तू कीतियां हन। असी तेरा शुकराना नहीं करदे, तेरा शुकराना भूल जांदे हां। इसलिए ए हमरो सुआओ, ए साडा सुभा ही बन चुकिया। जे एक जन्म दा होवे सुभा तां बदल लईए, कईआं जन्मां तों इही सुभा तुरिया आ रहा है। इस लई तेरी रहमत ही सानू तार सकदी है, तेरी बख्शिश ही सानू तार सकदी है। ए ईश्वर अगे सारिया ने मिल के अरदास करनी है, हमरो सुआओ, हमरो सुआओ। साडा की सुभा है, आद अंत जो राखन हार, ध्यान देना, आद अंत जो

परमेओ मूड़े ममता लागे तुद हर विसरे तू क्रोध दे वस हो गए काम दे वस हो गए ममता दे वस हो गए।

गुरु अमरदास जदों गुरु नहीं सन बने हर साल हर द्वार गंगा नहाण जाया करते सन। इस वरी भी गंगा नहाण जदों गए एक ब्रह्मचारी महात्मा मिल गया, ऐसा प्यार पिया।

गुरु अमरदास जी ने बैठ के शक लेना। जे गुरु अमरदास जी ने प्रशादा पकाना, उस ब्रह्मचारी ने नाल बह के शक लेना।

नाम है अष्टावक्र। कहन लगे राजे जनक नु, मैं तेरा गुरु बनांगा। सारे हस पे। कहन लगे अपनी शक्ल नहीं देखदा, कुब निकले सीधा तुर नहीं सकदा, बच्चे शक्ल देख लैन ते सारी रात सौण ना। आया राजे जनक दा गुरु बनन, पर अष्टावक्र जी ने उन्हां लोकां दे मखौल वल ध्यान नहीं दिता। राजे जनक नूं कहा, मैनूं बेटा की देवेगा, मेरी बेटा या ते सारा राज या अपनी सारी धन दौलत दे या अपना शरीर दे ते या अपना मन दे, राणी दे नाल सलाह कर ले। राणी ने कहा राजे जनक नूं,

तेरा मन किथे, तेरा मन ते मेरा हो गया है, हुण तू ओ करेगा जो मैं चाहवांगा, मेरा मन नहीं करदा, तू घोड़े ते चढ़े क्योंकि तेरा मन मेरा हो गया थले उतरिया। सोझी हो गई कि सारा झगड़ा ही मन दा, जदों मन वस विच आ जाए

इस वास्ते उपदेश है, तुझ सिर लिखिया सो पढ़ पंडित, अवरानू ना सिखाल बिखिया, पहला पहा पया पा दे पिछो दे गल चाटड़िया। ये कहो जो उपदेश लोकां ने क्यों माड़े पासे लाना है, पहला जमा दा फहा तेरे गल पवेगा ते पिछू तेरे चाटड़े आ। उपदेश है।

धन गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करन आए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, भाई दयाला अमृत छको सिंह सज जाओ। भाई दयाले ने कहा, सिखी तुसा तुहाडे वड्डिया ने दिती है, अमृत दी की लोड़ है। गुरु साहब ने कहा, असी कुछ मंगते नहीं दे रहे हैं, खालसा सिखी है, सिखी खालसा है, चीज ओ ही है, रंग नवा है, अमृत छको। पर भाई दयाले ने कहा, जिथे हैगा उथे रहन दो, अमृत की कर। गुरु साहब ने कहा, चंगा फिर हुण जदों सिखां दे अगे नक्का रगड़ोगे फिर तुहानू अमृत मिलेगा। भाई भगतू दी वंश विचों ही भाई जीवना जी होए ने।

जपण वाली, ना पति है ना कोई पुत्र है। ए राम सिंह ए चारों भरा एदे नाल बोलदे नहीं, इनू मन होश गरीब समझते ने, कोई एदा सत्कार नहीं करता। अरे बड़ा सिमरन कर दी कपा चुगी वाहेगुरु वाहेगुरु करके सूत्र उणिया, वाहेगुरु वाहेगुरु करके कलगीधर पातशाह वास्ते एक खेस उणिया, वाहेगुरु वाहेगुरु करके रोज अरदासा कर दी ए कलगीधर पातशाह। पति सिर ते नहीं पुत्र तू कोई बख्शिया नहीं, किदी बांह फड़ के तेरे को लावा, किन्ना चंगा होवे जे तू मैनू दर्शन देवे, एक खेस लै लवे मेरे मन नू ठंड पै जाए। ये अरदासा कर दी उधर साहबां नू खिच पैंदी। एक दिन कहंदे ने राम सिंह आई तैयारी कर तेरे पिंड चल। राम सिंह बड़ा खुश होया, पिंड वालियां नू पता लगा तैयारियां होण लग पईयां कि गुरु साहिब ने साडे पिंड आना।

चरण फड़ ले, अथरू नहीं रुकते, कोई इज्जत नहीं देंदा, कोई मान नहीं देंदा, पर जदों पिता गुरु मिले मन फिस गया। ऐ मना पिता गुरु घर आया, हुण गुरु नू अपना दुख दसना है, अपना सुख भी तो इनू कहना है, और कौन है। पता नहीं किन्ना चिर बीत गया, कलगीधर पातशाह ने प्यार नाल सिर चुके आख्या बेटा ये साडा खेस संभाल के रख, अस फिर आके ले जांगे, नाले रोटी भी खावांगे। बीबी दे सन किसी आनंद विच गुआच गई, सबा फिर घोड़े दे छाल मार के सवार होए। राम सिंह अगे उड़ीक रहा सी, ओदे पिछे जा पहुंचे।

तुसा मेरा की सत्कार करना है। और मैं कड्डो मना विचो बिलकुल इनू मथा, तुसी चार भरा हो अमृत छके है पर आपस च प्यार नहीं, जे तुहाडे विच प्यार नहीं तो तुसी मेरे नाल

रो लिया से रो रो के मेरे तन गुरु नानक पातशाह ने चरना रुतो पातशाह बख्श अदूर कहन लगे मरदाने बख्शीए मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनू पुछ के बख्श दो ये तो थोड़ा बिरद जो शरण आवे तो संत लावे ए बिरद तो हजूर ने अमे दृष्टि तकिया तुकिया करोड़िए फिर जप सतना संसार रोगी नाम करोड़िया नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन पवित्र गाड़ी बाणी पड़े गाड़े सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेरू निरंकार ने माया दिती है दान पुण्य आज माया भी कर सत्य हूं करोड़िया सेठ गल च पला पा के कहना पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चलो मैं थोड़ी सेवा थोड़ू प्रसाद छकाव दुध पिलाव अदूर कह लगे क्यों मरदाने चलिए मरदाने ने कहा महाराज भी कोई पुछण वाली गल नहीं चलो हूं तो सिख बन गया कौड़िया अदूर कह लगे मरदाने अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह हजूर कह लगे मरदाने अजे सिखी दिती सिखी की है हुक्म जे हुक्म मनेगा तो फिर ही साडा सिख बन सिखी गलां भी सी गलां की सिखी कमजोर सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरू का हुक्म हुक्म बनिए होवे परवान ता खसमे का मह करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करिए असी आवांगे तेरे घर प्रसाद भी छकांगे ते आके वाहिगुरू के नाम का पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह और करोड़िए चरना तो कह पातशाह मैं गरीब ने नहीं बख्शिश कर दिती है हजूर कह लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरू की जिस वेले बख्शिश का समा आता है तो जिना संभाल लेता है वह पग अज करोड़िए बख्शिश होगी तो भी गुरु की बख्शिश हो बख्शिश वाला समा मिले बख्शिश तो शरीर ही है बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वही आप जिन्हों के भागा बख्श दो वे आके आप कीर्त नहीं जुड़े जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्हों ने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शी से ही नागा नहीं पाएगा चौड़िया ये मालिक की दात ये जोर भी चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसे पासे उड़ीक है तो कई गुरु प्यारे थोड़े वर्गे माई भाई कीर्तन का अमृत से तो यह दात गुरु की अपनी है हजूर कह लगी मरदानिया रवाब चुके शब्द ही अकेली तक पड़ी मरदानिया ने रवाब चुकया तो बाबे ने सोने गले शब्द का की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

0: जो गुरु का देश सहबा ने करोड़िए के बख्श और असी भी इस उपदेश को हृदय बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखी है पर लोग सुखे ने हर पल आपे मिले और कैरी सात संगत जिथे होस्टल दिया संत गुरुद्वारा साहब के प्रबंधा के उद्यम दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल तो अज गुरु दरोवर साहेब अमरीकन सिंह ये गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर अनुभाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक का सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई उस कोई विथ नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाण गए उस तो कीर्तन की समाप्ति अमृत वेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रूटीन कह दी है उसे कारण कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी की महान महान बख्शिश द्वारा बरखुरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने कीर्तन की भेद शब्द आदर करते डालर अरदास कराते मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने गुरसिखा बच्चिया सिखी जीवन सदाचार दिया कला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार
1: वाहेगुरु जी का खालसा Thank you.

नामदेव पिया मानो के नाम जपण वालियां दे देव, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राय, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रिसा। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे दर्शन।

स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज दे पंथ दे विच दाखल हो गए ते चल पे उना दे नाल तीर्थां दे भ्रमण करदे करदे ते जा करके द्वारका नगरी तो थोड़ी दूर बाहर स्वामी ज्ञानेश्वर जी ने विश्राम कीता। देखिया नेड़े एक खूह दिखाई दे रहा है मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देंदा। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया देखिया भाई ए मेरे नाल जो चले आ रहे

तेरी नारायण ने सुन लई, आइंदा समय विच जेड़े भी इस राह तो गुजरन गे ओ अपनी प्यास तेरी अरदास दी शक्ति द्वारा बुझाया करन गे। नामदेव ने शुकराना कीता नारायण दा, पानी पीता प्यास बुझा करके

ईश्वर जी ते साथियां ने देखिया मगर नामदेव दिखाई नहीं दिते, क्योंकि नारायण दे चरना कमलां विच जुड़े ते ज्ञानेश्वर जी ते उना दी मंडली ते अगे नू चाले पा गए, मगर नामदेव दी समाधि खुली ते की देखदा है कि उस चौंक दे नेड़े तेड़े एक पठान खलोता है ते उस पठान ने पगड़ी पाई हुई है ते उस पठान दे कोड़ी ने वछेरा दिता है। कदी वछेरे वल देखदा है नामदेव ते कदी उस दी पगड़ी वल देखदा है ते पठान नू देखदे देखदे मानो पठान दे रूप विचों नारायण नू देखदा होया

सेवक के भरपूर जोग जोग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभु सदा सलामत।